छिड़का के वे जान जान लंगे साडी बीह नू चिड़ा के वे लथे ओदा सुहाग दा वे कोका लथे ओदा

0: घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फसत जात हम मरत

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हाथ खिलारदा।

वाह वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबोलाल दी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़े इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वरना ते चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने,

0: वाह पाको पाको
1: आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी मैया तो पे वार दूं, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, इसलिए इसलिए आजा पिया।

0: बहुत को
1: और एक ही जड़ा है मैं आप जी की नजर कर रही हूं विशेष करके
0: थैंक यू जी
1: जड़ा हूं मैं सुना लगी हूं
0: हां जी।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाउंदे हन रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उत्ते।

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तो

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों.

0: बाखो
1: और एक फिल्म हो रही है सर, ये भी फिल्म तुसी देखियो, ये फिल्म वी शांता राम जी ने बनाई, बड़े तुहानू पता है मन्ने हुए डायरेक्टर से गए हो
0: जी,
1: और उन्हां दी ही बेटी ने इस गीत च हीरोइन दा रोल किया सीगा। इहदे गाने सारे हिट सीगे और इहदे लक्ष्मीकांत म्यूजिक डायरेक्टर ने। फिल्म दा नाम है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली।
0: जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, ठीक है।
1: और उस संध्या ते एक गीत सारे, क्योंकि वो डांसिंग दी फिल्म सीगी, उदे च वो डांसर होंदी है।
0: अच्छा, फिल्म च काफी डांस है उस फिल्म दे विच।
1: हाँ, काफी डांस ने और स्टोरी भी बड़ी मार्वल है।
0: अच्छा अच्छा, मैनू फिल्म इंडस्ट्री बारे, फिल्म इंडस्ट्री बारे बहुत घट नॉलेज है जी, इतना नहीं, बिल्कुल मामूली।
1: मैं दस रही
0: हूं। हां ठीक है जी।
1: एदे च इक्को ही गीत स्टार्टिंग च मुकेश जी तो गवाया।
0: हां जी,
1: ते बाकी चार गाने जेडे ओ लता जी ने गाए ने।
0: ठीक,
1: ते उना च ए गीत आज मैं पहली बार आप जी दे प्रवाज रेडियो ते सुना रही हां
0: जी।
1: गीत बड़ा औखा जिहा हैगा, लेकिन जदो सुनोगे ओदा बड़ा इजी लगदा है।
0: ठीक है जी,
1: आओ आपां ए सारे सुनदे हां। हक गरा लगा के रे बिंदियां सजा के रे हारे मैं तो आई रे आई मोहिलाई मिलन धुन पिया की

बस में नहीं जिया रे हारे मैं तो आई रे आई मोहे लाई मिलन धुन पिया की रे हारे मैं तो आई रे आई मोहे लाई मिलन धुन पिया की।

0: दूंगा।
1: फूल की डाली जैसे रंग रुमाली, ओ कोई देवी हमें भी निशानी। उड़ती फिरूं गाती फिरूं सच्ची लगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में।

आवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खट पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM पर आवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

यक चतुर नार करके श्रृंगार, यक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात।

0: घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: हारे नाले में जाके तुम धोके आका नारे गारे गारे
1: जरा बड़े से
0: गारे गारे
1: ये सुर बदल
0: गारे गारे
1: ये हम का भटका
0: गारे गारे
1: ये सुर की तरह जी ये सुर इन्ना आया है तो
0: एक चतुर नार अब
1: पकड़ कर रखेगा जे
0: मेरे मन के द्वार ये घुसत

0: घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मर

तो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो। ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप दियां दियां कालां लांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां,

0: ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो सीआरओ रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ हाउ यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स बिल्कुल बिल्कुल
1: दोस्त होस्ट दर्शन

Hello. दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके ताडे नाल हाजिर हो गए जी न्यूयॉर्क स्टूडियो तो न्यूजर्सी तो मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नु जी अज आपां कुछ गीत सुरेंद्र शिंदा भाजी होना दे सुनांगे पुत जटा दे पहला गाना ताड़ी सेवा विच उस तो बाद आपां फिर अगला प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वह खबरां दा कुछ करांगे फिर डॉक्टर साहब दा प्रोग्राम होएगा दो घंटे दा प्रोग्राम ताड़ी सेवा विच लैके हाजिर हो गए हैं जी लो जी पेश है पहला गीत